फूल पासुर से बचत गुस्ते काचा तोर मगेत अतलेप काचा काचा सेतेज गद्दतारे बगिना डोली काचा सेतेज तेरा सोत्रा तक काथियो का केलाबन कडप का रो तेरा नंगर ओ की अल्लाह लगा